आया हीरों को बचाया, ओ यारों का मयार दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन गांव गानी जनार्दन।

पिक्चर देख सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, किस्मत ने घुमाया होटल में पहुंचाया हूं यारों का नया दुश्मनों का दुश्मन देखना धनी।